0: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
1: Relax, I've booked the Uber already.
0: How? My roaming isn't even working yet.
1: I switched to Simsy before we left London.
0: Simsy? Since when are you the tech expert?
1: Since I decided I want a stress-free holiday.
2: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
3: T's and C's apply.
4: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर लेस्टर में.
5: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गाविए गुणी निदान। गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख कर ले जाए। गुरमुख नादन गुरमुख वेदन, गुरमुख रया समाई। गुरीसर गुर गोरख बर्मा गुर।

मैं विसर ना जाए जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले जे तिस नदर ना।

जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पथ्यों प्रगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध।

वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहावी।

पुरख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच्छ मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

नाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध।

कर कर वेखै सृजनहार। नानक सच्चे की साची कार, आदेश तिसै आदेश, आद अनिल अनाद अनात, जुग जुग एको वेस, एक दूजी बोल लख होवै लख होवै लखवीस, लख लख

ना जोर, जोर ना जीवन मरण ना जोर, जोर ना राजमाल मंसोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगति छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुती छिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान, कच पकाई उथे पाए, नानक गया जापै जाए, धर्म

0: ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ, ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੇ, ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ .com ਤੇ ਅਲੈਕਸਾ ਪਲੇ ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ.
1: When it comes to heart attacks, you might be surprised to hear the symptoms don't always feel severe. You could experience a squeezing across the chest, a feeling of unease, a sense something's not quite right. Don't be tempted to dismiss the signs and wait to see what happens. The faster you seek medical help, the better your chances. It's never too early to call 999 and describe your symptoms. Your NHS is here for you.
2: मेरे पापा को गुलाब जामुन बहुत पसंद है.
3: Order online at pujasweets.com. From barfi, laddus, gulab jamun to samosa and gathia. From catering starters to dessert, Pooja Sweets and Savories.
4: Abhi call kijiye 0116-202-1222 or visit Melton Road, LE4-5EA.
3: Pooja Sweets and Savories.
5: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर.

0: good morning. Welcome to the world of entertainment. लेकिन सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं भाई, इसमें सूचनाएं भी हैं, समाचार भी हैं, विचार भी हैं, गीत और संगीत वो तो है ही। दोपहर बाद एक बजे तक मैं मनोरंजन प्रोग्राम लेकर आपकी सेवा में हाजिर हूं और मेरा नाम है रवि शर्मा। और बहन भाइयों, पहले आप सब की ओर से धन्यवाद कहूं काजल को, शील बी बैक ऑन मंडे मॉर्निंग। दो दिन के अवकाश के बाद लौटी है, नेचुरली चेहरे पे निखार है, अच्छाई बाहर है और बाहर तो बाहर भी है, बाहर यानी खिड़की से झांक के देखो तो आज भाई जो खिली हुई धूप है, हम लोगों को ज्यादा सुहानी लगती है ये धूप। जब कभी पसीना लाने वाली भी धूप होती है ना, हम स्टूडियो से निकल के बाहर जाते हैं तो स्टूडियो में इतनी ठंड होती है साहब, इतनी ठंड होती है जैसे हम किसी हिमालय की चोटी पर बैठ के प्रोग्राम करके आए हैं। बाहर निकलते ही वो धूप इतनी सुहानी लगती है, प्यारी लगती है, क्या कहें। तो शर्मा जी, पहले अपनी डायरी खोलिए और शुरू हो जाइए। ना कुछ उनको जल्दी, ना हम बेसब्र हैं, जो दिल में है लब पे नहीं आ रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ कह रहे हैं और हमें धीरे धीरे यकीन आ रहा है। मैं खुद बन के राहों में गुल क्यों ना बिखरूं, जो फूलों से भी है हंसी आ रहा है। जहां मुझको तन्हा वो करके गया था, वो वादे का पक्का वहीं आ रहा है। तो लीजिए, उन्हें स्वागतम कहते हैं साहब। Like a
1: radio. Let's return to the biggest hits back to back. This is Like a Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Like a Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Are you listening? Like a Radio is now available across Wolverhampton on DAB.
0: जरा शादियां ने बजाओ मिलन के, वो बिछड़ा हुआ हम नशीं आ रहा है। जहां मुझको तन्हा करके गया था, वो वादे का पक्का वहीं आ रहा है। यहीं रखेंगे इसको।

0: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
1: आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम आपके अपने प्रेजेंटर रवि शर्मा के साथ।

0: लोग सूरज का नाम लेते हैं पर अंधेरों से काम लेते हैं, और हंस की हूबहू नकल करके आज बगुले भी नाम लेते हैं। भाई हंस तो हंस होता है, और हंस की आवाज क्या बात है साहब। ये अलका याग्निक के साथ हंसराज हंस की आवाज सुनिए आपने इस गीत में। बड़े सुरीले गायक कलाकार हैं, और मैंने तो भाई कई बार बिल्कुल उनके सामने बैठ के नजदीक बैठ के सुनने का मजा ही कुछ और होता है। यानी कुर्सियां बिछी हो ना तो भी मैं जा करके उनके नजदीक, यानी जो है जमीन पे बैठना पड़े, चाहे स्टेज पर वो चौकड़ी मार के बैठना पड़े, लेकिन चाहे वो खान साहब हों, गुलाम अली खान साहब जब आए उनके भी पास बैठ के मैंने भाई ऐसे गायक कलाकारों के चरणों में बैठ के सुनने का मजा कुछ और ही होता है। और हंसराज हंस बड़े सुरीले गायक हैं भाई, यही गीत मैंने फरमाइश करके उनसे कहा कि भाई ये गाइए आप, और ये गीत कानों के रास्ते सीधा दिल में उतरने वाला है। इश्क दी गली बीचों कोई कोई लंगदा, और इससे पहले जो गीत सुनवाया ना, दोस्त बन के आए हो दोस्त बन के ही रहना, इस गीत के साथ भी कुछ यादें जुड़ी हैं बहनों भाइयों। भाई जब मैं मॉरिशस में शो करने गया था, अब आप पूछेंगे कब गए थे, 1980 की बात है, 1980 का साल था, और वहां पर एक बैंड था उस समय, अब भी होगा, रिवोली बैंड, उसके कलाकारों के साथ भाई हमारे शोज जो है वो ऑर्गेनाइज किए गए थे। और जब वो स्टार्ट करते थे, मुझे इंट्रोड्यूस करते स्टेज पर, तो ये गीत गा करके बड़े अदब के साथ भाई, बड़े प्यार और सम्मान के साथ उन लोगों ने हमारे साथ कार्यक्रम की याद आए रहे हैं, आते रहे हैं। दोस्त बन के आए हो दोस्त बन के रहना, और अब बहुत ही मुश्किल है बेवफा तुम्हें कहना। तो भाई वफा निभा रहे हैं आप, हमें याद आ रहे हैं। मॉरिशस में दो बार गया मैं शो करने के लिए, और डिफरेंट डिफरेंट जो है वेन्यूज पर हमारे कार्यक्रम हुए। हाँ, नाम भी कमाया, थोड़ा दाम भी कमाया, लेकिन वो पुराना समय भाई कभी मैं भुला नहीं पाया। थैंक यू मॉरिशस वासियों। फ्राइडे शुक्रवार वर्ष 2026 के जून महीने की 19 तारीख हो गई आज, और आज के कार्यक्रम में भाई सब कुछ है जो रोज होता है। उसके अलावा लेट मी टेल यू द पाउंड रेट फर्स्ट।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके आज का रेट बता रहे हैं। भाई अपनों को पैसे भिजवाना चाहते हैं तो वो दे रहे हैं एक पाउंड के बदले 124.45 रुपए, यस 124.45 रुपीज फॉर 1 पाउंड। बट दिस इज नॉट ओनली थिंग, भाई देर इज समथिंग एल्स एज वेल। वो कहते हैं कि सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन 75 पाउंड्स वाउचर एवरी डे। यस 1000 पाउंड से ज्यादा जब आप भेजें तो ये ऑफर साथ में है, और भाई अगर आप 2000 पाउंड या उससे ज्यादा भिजवाते हैं तो देर इज ए चांस टू विन 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक। Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Yeah. Like our radio.
3: Like a radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: और साहब फुटबॉल का महाकुंभ वर्ल्ड कप चल रहा है, 3-3 मेजबान है अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा। और भाई कल का मैच मेजबान की टीम ने खेला और अच्छा खेला, साउथ कोरिया के खिलाफ 1-0 से उन्होंने जीत हासिल की। तो मेक्सिको कांग्रेचुलेशंस भाई। अभी आने वाले मैचेस के बारे में बता दें, एक और मेजबान यूनाइटेड स्टेट्स आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भिड़ रहे हैं, और वो ग्रुप डी का मैच होगा शाम 8 बजे, और रात 11 बजे स्कॉटलैंड वर्सेस मोरक्को। तो भाई फुटबॉल से हम आपको जोड़े रखेंगे, किन की बदौलत, हमारे जो भाई स्पॉन्सर्स हैं रैक लॉ, उनकी एक और ऑफर है। वो कहते हैं कि गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.

हाँ, ये याद करें एक महान कवि को जिनकी ये रचना भाई बरसों से ताजगी का एहसास कराती है। रफी साहब की आवाज में आती है।

0: मजार दे, ओढ़ कर कफन पड़े मजार देखते रहे। कविवर नीरज की रचना। भाई आपने रफी साहब की आवाज में ये गीत सुना। और अब समय पर नजर डालें तो भाई वक्त हो गया खबरों का। और खबरों में यहाँ ब्रिटेन में तो भाई चर्चा में है बर्नहम। He wins the Makersfield by election। और भाई उनके चुनाव जीतने के साथ ही कहते हैं कि प्रधानमंत्री पर एक प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि वो प्रधानमंत्री को चुनौती देने वालों में जो है नेता माने जाते हैं। अपनी विनिंग स्पीच में उन्होंने कहा है कि जनता ने हम पर भरोसा किया और हमें उनके भरोसे पर खरा उतरना है। दैट वाज हिज विक्ट्री स्पीच। लेट्स फाइंड आउट व्हाट एल्स वी हैव इन द न्यूज। पर ये गीत आप तक पहुंचा रहे थे कौन?
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a radio.
0: Like a radio network. Ab aap रवि शर्मा से आज की खास खास खबरें सुनिए। अफगानिस्तान के तालिबान शासन की डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि उसकी एयरफोर्स ने कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में आईएसआईएस से जुड़े कई ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह बताया है कि हमले बलूचिस्तान के गुलिस्तान और शकराब इलाकों में आईएसआईएस खुरासान के हेडक्वार्टर और खैबर पख्तूनख्वा के कई जिले के कंबरखेल इलाके पर किए गए हैं। और कजई जिला। डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया कि इन जगहों का इस्तेमाल कुछ दुश्मन खुफिया हलकों की मदद से अफगानिस्तान पर हमले की प्लानिंग बनाने के लिए किया जाता था। पहले भी ये जगह कई घातक हमलों की योजना और शुरुआत के लिए इस्तेमाल की गई थी। दिल्ली का पहला ऑल वुमन पुलिस स्टेशन उत्तर दिल्ली की सब्जी मंडी इलाके में आज खुल गया है, शुरू किया गया है ऑल वुमन पुलिस स्टेशन। इसका मकसद जो है महिलाओं को सिक्योरिटी देना और सिक्योरिटी को मजबूत करना और उनके खिलाफ होने वाले क्राइम्स की जांच करने के काम को बेहतर बनाना होगा। राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी के इल्जाम पर पहली बार बोले चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने आज कहा है कि एसआईटी गठित हो गई है और 15 दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि राम भक्तों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि अयोध्या को बदनाम करने वालों के बहकावे में ना आए, चिंता मत कीजिए, 15 दिन इंतजार कीजिए, एसआईटी बना दी गई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम, और दूध का दूध पानी का पानी होके रहेगा, सब साफ हो जाएगा। आपको बता दें कि राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी की कुछ खबरें काफी वायरल हो रही थी पिछले दिनों में। लेबनान की नेशनल न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि देश के दक्षिणी इलाकों के कई शहरों पर इजराइल के अटैक्स जारी हैं। इनमें कम से कम 16 लोग मारे जा चुके हैं। मीडिया के अनुसार आज सुबह से इसराइली फौज नबाती शहर और उसके आसपास लगातार हमले कर रही है, जबकि अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते में यह कहा गया था कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर फौजी कार्रवाई बंद की जाएगी। इसी बीच अमेरिका और इसराइल के बीच साउथ लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले रोकने को लेकर के मतभेद बढ़ गए हैं। छत्तीसगढ़ से खबर आ रही है, वहां बीजेपी नेता समेत 3 को वहां जिंदा जला दिया गया, ये खबर आ रही है। अभियुक्त न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें कल गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इस विवाद में दोनों पक्ष बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं, यानी आपसी रंजिश का मामला है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राहुल गांधी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी की अच्छी हेल्थ और उनकी लंबी उम्र की कामना की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनकी अच्छी हेल्थ और उनकी लंबी उम्र की मैं कामना करता हूं। भारतीय ऑलराउंडर श्रेयंका पाटिल चोटिल होने की वजह से वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई हैं। कल नीदरलैंड्स के खिलाफ ग्रुप ए, परसों जो मैच खेला गया था नीदरलैंड्स के खिलाफ, उस मैच में फील्डिंग करते हुए श्रेयंका पाटिल का एंकल मुड़ गया था। इसके बाद उन्हें स्ट्रेचर की मदद से ग्राउंड से बाहर ले जाया गया था। श्रेयंका पाटिल की जगह अब टी20 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए टीम में प्रेमा रावत को शामिल किया जा रहा है। प्रेमा रावत ने हाल ही में विमेंस प्रीमियर लीग और विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कल रात एक वीडियो मैसेज शेयर किया है। इसमें वो हिंदी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। मैक्रों ने कहा कि मेरे दोस्त नरेंद्र, नीस, एवियन और पेरिस के दौरे पर आपका स्वागत करते हुए मुझे खुशी हुई है। फ्रांस और भारत की दोस्ती अमर रहे। इसके बाद फ्रांसीसी प्रेसिडेंट ने अंग्रेजी में कहा कि मुझे उम्मीद है कि ये संदेश सही होगा। डियर प्राइम मिनिस्टर, इस दोस्ती के लिए आपका धन्यवाद। मैं अगली फरवरी में फिर आपसे मिलूंगा। ईरान की एक अदालत ने गायिका परस्तु अहमदी और कारवासराय कंसर्ट के 8 दूसरे मेंबर्स को 74 कोड़े मारने की सजा दी है, 74 lashes। साथ ही इन पर 2 साल तक देश से बाहर जाने और 2 साल तक कला से जुड़ी किसी भी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने पर रोक लगाई गई है। जिन लोगों को सजा सुनाई गई उन पर आरोप है कि इंटरनेट पर गलत और अश्लील चीजें डालकर ये लोगों को जो है गुमराह कर रहे हैं, उनकी शालीनता को नुकसान पहुंचाया गया है। यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स अधिकार वाली काउंसिल में भारत की स्थायी मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी अनुपमा सिंह ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है और रहेगा। अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में हो रही वायलेंस का जिक्र करते हुए पाकिस्तान पर कई इल्जाम लगाए हैं। अमेरिका की ओर से ईरानी बंदरगाहों पर लगाई गई नौसैनिक नाकाबंदी हटा ली गई है। दोनों मुल्कों के बीच समझौते पर हुए दस्तखत के ठीक बाद यह कदम उठाया जा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमेनी ने कहा है कि अमेरिका के साथ हुए समझौते पर उनकी अलग राय थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस पर दस्तखत करने की इजाजत दे दी है। ईरानी मीडिया ने कल शाम को मुस्तफा खमेनी का बयान छापा प्रकाशित किया है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
3: ये है Like a Radio Tasty Track of the Hour, brought to you by Coca Noodles।
0: लौट आइए फिर से संगीत की ओर और आइए मिलकर के एक दृढ़ पक्का इरादा करें, साथ रहने का मजबूत वादा करें। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। अनुराधा पौडवाल, मोहम्मद अजीज और साथियों की आवाज़ है।

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: Leica Radio. Holiday breaks are brought to you by South Old Travel.
2: और साउथ ओल्ड ट्रेवल का वादा भाई, मेक समर मेमोरेबल विद साउथ ओल्ड ट्रेवल. एक्सप्लोर बीच ब्रेक्स, सिटी एस्केप्स एंड मोर विद हॉलीडे डील्स दैट इंक्लूड फ्लाइट्स, होटल्स एंड एट ऑल प्रोटेक्शन. 40 वर्षों से भी ज्यादा का तजुर्बा, लोगों का विश्वास और भाई ब्रिटिश ट्रेवल अवार्ड है उनके पास. विजिट साउथ ओल्ड ट्रेवल और कॉल 0208574 8410.

स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। ये लाइका रेडियो नेटवर्क पर लाइका गोल्ड रेडियो है और आप सुन रहे हैं रवि शर्मा के साथ मनोरंजन। यस, दैट्स माय नेम। और बहनों भाइयों, मैं आपकी सेवा में दोपहर बाद 1 बजे तक हाजिर हूँ। इस समय ब्रिटिश घड़ियों में 11:04 हुए हैं। अगर आपने रेडियो भी सुनना शुरू किया है, भाई स्वागत है आपका। अब जुड़े रहिएगा हमारे साथ। लेट मी टेल यू दैट दिस इज द टाइम व्हेन आई ब्रिंग यू थॉट फॉर द डे, आज का विचार। और आज के विचार में हम आलेख शामिल कर रहे हैं भारत से हरविंदर मलिक का। हरविंदर मलिक कह रहे हैं कि जी, पहले तो आप चिंतन से पूर्व हमारी बहन परवीन रानी को बधाई दीजिएगा, फिर से वो काउंसलर चुनी गई हैं। और भाई चुनी गई है बोरमवुड क्षेत्र से, लेकिन उससे भी ज्यादा बधाई उनके बेटे को मेयर बनने पर, बहुत सारी शुभकामनाएं। तो परवीन और तुषार, आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। आप ब्रिटेन का नाम भी रोशन कीजिए, हरियाणा का और भारत का नाम तो आपने रोशन किया ही है। गॉड ब्लेस यू। तो हरविंदर मलिक लिखते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है, ये सब कहते हैं, लेकिन एक विचार मैं भेज रहा हूं, इसे शामिल कीजिएगा। तो हरविंदर जी, जो विचार आपने भेजा है, हमारे यहां हमारे एक कॉन्ट्रीब्यूटर हैं देशराज बैसन साहब, उनकी ओर से भी ये विचार हमारे पास पहुंचा हुआ है। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए प्रस्तुत करते हैं आज का विचार, यानी आज का चिंतन।

छोटी सी कहानी आज के चिंतन में, पर बहुत प्यारी, प्रेरणादायक, और मुझे ऐसा लगता है शायद पहले भी मेरे कार्यक्रम में ये शामिल हो चुकी है, लेकिन अच्छी बातें बार बार दोहराना अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच टू बोथ द कंट्रीब्यूटर्स। भाई कहानी है एक फूल बेचने वाले छोटे बच्चे की। ये छोटा बच्चा एक दयालु व्यक्ति को भगवान का दोस्त समझ लेता है। बात यह है कि एक ये छोटा सा बालक चिलचिलाती धूप में एक मंदिर के बाहर नंगे पैर फूल बेच रहा था। अब तपती रेत पर खड़ा नंगे पैर बार बार उछलता, फिर कहीं जाकर के पैर पानी में भिगो के लाता, फिर आकर मंदिर के बाहर खड़ा हो जाता, क्योंकि फूल यहीं बिकते रहे थे उसके। तपती सड़क पर या तपती रेत पर चलते हुए कार में बैठे एक भले आदमी की नजर इस बच्चे पर पड़ी। उसने गाड़ी लाके उसके पास रोकी। बच्चा खुश हो गया कि कार वाला फूल खरीदेगा, पर वो आदमी गाड़ी से बाहर आया और बच्चे की तकलीफ का एहसास करके उसने मंदिर के पास ही एक जूतों की दुकान देखी और उस बच्चे को वहां ले जाकर के उसके साइज के जूते खरीद दिए उसे। जूते भी और मोजे भी, और दयालु व्यक्ति ने बच्चे को जूते पहनाए अपने हाथों से, सर पे हाथ रखा, प्यार दिया। जूते पहनते ही बच्चे ने भाई उसकी आंखों में चमक आ गई थी, खुश हो गया, उस आदमी का हाथ पकड़ लिया, और इससे पहले कि वो गाड़ी में बैठता आदमी हाथ छोड़ने को तैयार नहीं, बच्चा सवाल पूछता है, आप भगवान हैं क्या? अरे नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं हूं। नहीं नहीं नहीं, सच बताइए, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली? कल रात ही तो मैंने प्रार्थना की थी कि भगवान मेरे पैर बहुत जलते हैं, दोपहर में बड़ी तकलीफ होती है, और आज आप आ गए मदद करने, मुझे जूते दिला दिए, कितना सुकून मिल रहा है, आप जरूर भगवान हैं। नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं हूं, उस दयालु आदमी ने समझाया। तो फिर आप भगवान के कोई दोस्त होंगे जो भगवान ने आपको भेजा है और कहा है बच्चे को जूते दिलवाओ। बच्चे को उसकी प्रार्थना से खुश होकर के ये दया की है प्रभु ने। वो आदमी मुस्कुराया, कहने लगा ठीक है मान लो मैं भगवान का दोस्त हूं, भगवान का भक्त हूं, भगवान का प्रेमी हूं। जो भी व्यक्ति दया करता है, दयालु है, जिसके मन में करुणा है, ईश्वर का मित्र तो होता ही है। ईश्वर तो सब में निवास करता है, पर जब हम उसकी आवाज सुनते हैं तो हम परोपकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, मिले राह में जो कोई दीन दुखिया, मदद के लिए मुझको तैयार कर दो, मुझे अपना दोस्त बना लो, अपना प्रिय बना लो। देखा मैंने भाइयों, भगवान का दोस्त बनने में कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस हृदय में करुणा का भाव जगा लो, फिर तो यूं समझिए उस ईश्वर का स्वरूप आप में ढल जाता है। देने वाले के कई रूप हो सकते हैं, कई नाम हो सकते हैं, पर ये सब उसी के काम हो सकते हैं, ईश्वर के, परमात्मा के।

0: आज का चिंतन, आज का विचार आलेख हरविंदर मलिक का, भारत से उन्होंने भिजवाया। साथ में भाई बधाई संदेश परवीन रानी के लिए और सबसे छोटी उम्र के मेयर बनने पर उनके बेटे तुषार के लिए बधाई संदेश। बहुत सारी आशाएं भविष्य में, बहुत सारी उम्मीदें भाई बांधनी है लोगों ने तुषार के साथ। बधाई भाई। बहुत सारे लोगों की जो है रिस्पॉन्स आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं चिंतन के विषय में। अर्जुन कहती हैं भजन भी बहुत सुंदर और चिंतन भी बहुत सुंदर। सुनीता शर्मा कहती हैं व्हाट ए वंडरफुल थॉट। वेरी नाइस चिंतन, हैव लिसन्ड दिस स्टोरी विच इज वेरी इंस्पायरिंग। और रानी स्लोवाली वत्सला जी, आप सबके संदेश मिले हैं। परमात्मा के साथ कोई भी रिश्ता, विशेष करके माता का संबंध, माँ कभी अपने बालक को क्या करती है, इग्नोर नहीं कर सकती ना। पिता भी नहीं कर सकता। बताऊं आपको वत्सला जी, फादर्स डे आ रहा है और एक गीत फादर्स डे के उपलक्ष्य में हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अमित विज कह रहे हैं पिताजी को ये दुनिया छोड़े कई बरस हो गए लेकिन हर समय वो हमारे साथ हैं, आशीर्वाद के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में। पम्मी स्लाव से कहते चिंतन बहुत अच्छा लगा। रानी आप भी स्लाव से संदेश भेज रही हैं। फतेह पटेल वुल्वरहैम्पटन में हमें सुनते हैं और हमेशा चिंतन के विषय में अपनी राय भेजते हैं। और आप हैं अंजलि सिंह। अंजलि कहती है कि जितने बार भी इस विचार को हम सुनते हैं हमें हर बार नया लगता है। हो सकता है आपने पहले भी ये कार्यक्रम में शामिल किया हो, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, लेकिन आज भी एक नएपन के साथ हमने स्वीकार किया। बैक्सली हित से अंजलि थैंक यू वेरी मच। राजीव पटेल, रागनी, महेंद्र बजारिया, अरुणान, भूपेंद्र पटेल, महेंद्र क्रॉयडन में, विजय सटन में, जगदीश जी बुशी में, जैस्मीन आपका संदेश मिलता है एक सुंदर खूबसूरत तस्वीर के साथ, बाबा जी के दर्शन करा देती हैं आप। ट्रू वाहे गुरु जी। देशराज बैसन साहब आपका तो कहना ही क्या, बहुत सारी सामग्री हमारे कार्यक्रमों की शोभा बनती है, आप भेजते रहते हैं, थैंक यू वेरी मच। मानसी सहर, रंजन और सलमा मेडस्टोन में एहसास कराती हैं हम हमेशा आपके साथ रहते हैं। रवि जी, भरत गंगाराम और नीलम जी थैंक यू वेरी मच, सुन रही हैं प्रोग्राम। हिना थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। हिना आपने एक जोक भेजा है। जोक क्या कह रहा है? जो कह रहा है कि आज मैंने सूर्य देव से, सूरज से, सूरज देवता से यानी रवि से पूछा कि जब वर्षा जी आती है तो आप क्यों छुप जाते हैं, वर्षा यानी बारिश, जब वर्षा आती है तो आप क्यों छुप जाते हैं। सूरज ने कहा बताऊं क्यों छुप जाता हूं, आप ही बताइए, लेडीज के साथ कौन माथा पच्ची करे। और ये जोक भेजा है एक लेडी ने। थैंक यू हिना जी। हेतल सोलंकी आपका संदेश भी मिल गया है। भाई वीरेंद्र चौधरी जी सो नाइस ऑफ यू, आपको चिंतन अच्छा लगा। एजाज भाई चैशम में सुनते हैं। एजाज भाई आप ना भी लिखे ना तो भी हमें पता है कि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं। अनिल सोनी जी वियाना में सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। भाई आप सबको धन्यवाद दोहराते हुए और आप सबकी ओर से हरविंदर मलिक को यह धन्यवाद पहुंचाते हुए जिन्होंने आज के चिंतन के लिए सामग्री भेजी। आइए अब चिंतन को समेटते हैं और अपने मूल रंग की ओर लौटते हैं।
1: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK याद दिला रहे हैं भाई रेट अब भी अच्छा चल रहा है। भारत पैसे भिजवाना चाहते हैं तो इनकी सेवाओं का फायदा उठाइए क्योंकि आजकल तो ऑफर भी साथ लगी हुई है। टुडेज रेट इज फॉर वन पाउंड दे आर गिविंग 124.45 रुपीज। भारतीय करेंसी में 124.45 रुपए एक पाउंड के बदले वो दे रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं, कहते हैं कि इफ यू सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच जून के महीने में ऐसा करने पर भाई आपको 75 पाउंड्स वाउचर एवरी डे जीतने का चांस मिल सकता है इफ यू सेंड ओवर 1000 पाउंड्स। और अगर 2000 पाउंड या इससे ज्यादा की राशि भेजें तो भाई देयर इज अ चांस टू विन 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
1: Leica Radio.
2: Football score updates. Brought to you by Rack Law Solicitors. Specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: भाई फुटबॉल की इन्फॉर्मेशन आपको दें, वर्ल्ड कप महाकुंभ चल रहा है फुटबॉल का, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको तीन मेजबान, और भाई कल मेजबान ने अपना पहला मैच जीत लिया। मेक्सिको ने 1-0 से साउथ कोरिया को पराजित किया। बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के मैच में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे, कड़ाके की टक्कर होगी, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। हम आपको जोड़े रखेंगे फुटबॉल से, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और इसके अलावा भाई एक और बात, जो हमारे ये स्पॉन्सर्स है ना फुटबॉल के, उनका कहना है कि अगर कोई आपका नाम लेके हमसे संपर्क करता है, कौन है स्पॉन्सर्स, रैक लॉ वाले, वो कहते हैं कि अगर कोई लाइका मेंशन करता है और आपका नाम लेके हमें फोन करता है तो 15 मिनट्स की फ्री लीगल एडवाइस हम उन्हें देंगे। यस, आप जानते हैं भाई वकीलों का समय कितना महंगा होता है, बट दिस इज दैट 15 मिनट्स लीगल एडवाइस विल बी फ्री इफ एनीबॉडी कॉल्स एंड फोन एंड मेंशन लाइका।
2: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
3: ये है
1: लाइका रेडियो।
4: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
5: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
4: समारा ब्लैक टी 1 kg 3.99, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 3.99, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 1.99, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 ग्राम 1.99, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश एंड कैरी
5: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE1 2JU या रोलेट हिल LE5 4UN।
4: बिग डील्स, बिग सेविंग्स, व्हाइल स्टॉक्स लास्ट।
6: पैक्ड फॉर द ट्रिप? Gifts? Passport?
7: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
8: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
7: Simzy?
8: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
9: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com.
10: T's and C's apply.
11: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented and perfect for the dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.
12: Citybound Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
13: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
12: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
13: Also explore 2026 cruises
12: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call Citybound Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
14: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
15: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
14: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
15: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
14: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
15: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
14: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
16: Pepe's Piri Piri is firing up its 258th store at 3 Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton 3 Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.
2: New hits on Leica Radio.

0: Listen to the freshest hits added daily on Leica Radio. Miss your favourite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. It could be breakfast with Kajal, drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want. Leica Radio Midlands is a part of the number one Asian commercial network, the Leica Group, home of Leica Radio and Leica Gold.
1: Leica Radio.
2: ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
3: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
4: खुद से भी ज्यादा।
2: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
4: जो बात मेरे दिल में है वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
2: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT394.
0: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app.
1: Leica Radio.
0: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world.
5: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. Start with BAPS's Swaminarayan Mandir Darshan in Paris, then explore Europe's most iconic destinations. Call today on 0208 900 2323.
6: और लीजिए साहब, अब बैक टू बैक संगीत सुनवाते हुए पहले धन्यवाद दें भाई बंसरी, हमें सुन रही हैं तंजानिया में, दार एस सलाम तंजानिया में। अच्छी जगह है भाई, गया हूँ मैं जंजीबार भी गया हूँ और कहाँ कहाँ प्रोग्राम मुझे ले जाते हैं, लेकिन बंसरी जी आवाज़ के माध्यम से आप तक पहुँचना बहुत अच्छा लग रहा है। सुनिए, आपके साथ साथ और भी हमारे कई श्रोताओं ने याद दिलाया है कि वीकेंड पर पिताश्री को हम प्रणाम कहना चाहते हैं। भाई जिनके पिताजी उनके साथ रहते हैं बड़े भाग्यशाली हैं, और जिनके पिताश्री दूर हैं या पिताश्री दुनिया में नहीं, तो बता दें आपको कि पिता आपसे कभी अलग नहीं हो सकते। फादर्स डे है 21 जून को और दुनिया भर में मनाया जा रहा है, मतलब यहां तो मना ही रहे हैं भाई। फादर्स डे एवरी डे है क्योंकि पिता की बदौलत ही हम दुनिया में हैं। पिता हमारे रोम रोम में रमे हैं, हम उनसे बने हैं। पिता स्वर्ग है, पिता धर्म है, पिता ही परमो तपः, पितृं प्रीति आपन्ने प्रियन्ते सर्व देवता। भाई जिन्होंने अपने पितरों को या पिताश्री को प्रसन्न कर लिया ना, सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। श्रद्धा से, आस्था से पिताजी को याद कीजिएगा 21 तारीख को।

0: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: वेरी गुड आफ्टरनून टू यू भाई. बैक टू बैक संगीत सुनवाने के बाद हम आपको पाउंड का रेट फिर से बताने जा रहे हैं. सिर्फ भारत में अगर आप पैसे भिजवाना चाहते हैं तो नोट कीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके गिविंग अट्रैक्टिव रेट्स. आज का इस समय का रेट है, एक पाउंड के बदले वो दे रहे हैं 124.45 रुपए मैक्सिमम 124.45 रुपीज. लेकिन सब इतना ही नहीं, अगर आप योनो ऐप के माध्यम से, एसबीआई का जो योनो ऐप है उसके माध्यम से या उनकी ब्रांच में जा करके 1000 पाउंड से ज्यादा भिजवाते हैं तो साहब 75 पाउंड का वाउचर एवरी डे लोग जीत रहे हैं. देयर इज अ चांस टू विन 75 पाउंड वाउचर. और अगर आप 2000 पाउंड से ज्यादा की राशि भिजवाते हैं तो यू कैन बी यू नो विनर ऑफ 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 पाउंड. TNC अप्लाई.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Radio.
2: Lister, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
3: नहीं, तो चलो Falcon Cash and Carry.
2: Samara Black Tea, 1 kg, 3.99. Elephant Medium Atta, 25 kg, 14.99. Falcon Brown Sugar, 3 kg, 3.99. Lela Basmati Rice, 10 kg, 11.99. Suhana Khaman Dhokla, 500 gram, 1.99. Falcon Red Lentils, 1.5 kg, 24.399. Parle G Multipack Biscuit, 7.99 gram, 1.99. Falcon Lemon Juice, 250 ml, 3 for 1. Falcon Cash and Carry,
3: 82 Assistant Street, LE12JU, yeah, Rowlatt Hill, LE54UN.
2: Big deals, big savings, while stocks last.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: 105 shows pura karya pachi have Leicester ma avi rahyu che ek dhamakedar international Gujarati comedy natak
7: Jay's Entertainment laine avi rahya che sakhna re jo husband ji
6: Reena Shah ane Samir Shah sathe hasyano full dose. 28 June People Center Leicester ma be shandar shows bapore 8 vage ane sanje 7 vage. Tickets booking mate call karo Mr. B0 07860-280-655, Mumbai Sandwich Station 07834832249 or eventbrite.co.uk. Sakhna rejo, husband ji.
8: Are we there yet?
9: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
8: Relax, I've booked the Uber already.
9: How? My roaming isn't even working yet.
8: I switched to Simzy before we left London.
9: Simzy? Since when are you the tech expert?
8: Since I decided I want a stress-free holiday.
10: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable dates in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
11: T's and C's apply.
12: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
13: सेलिब्रेट फादर्स डे on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented and perfect for their dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.
14: style. The future belongs to creators. At RoboThink Summer Camps, children build robots, learn coding and future-ready skills. Leica listeners get 10% off full week bookings with code LEICA10. Kit package worth over £7,500. Visit book.robothink.co.uk/Leica.
15: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favourites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
16: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit heartyhanks.com. Hearty Hanks. Outdated is out of business. Visit heartyhanks.com today.
17: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station? Playing Bollywood classics 24/7 and with your favourite presenters live. Get the tune-in details at leicagold.com. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
1: A very good afternoon to you. आप जानते हैं इस सप्ताह के कलाकार का नाम क्या है, काम क्या है? अरे साहब, उनका मुकाम क्या है? बहुत बड़ा नाम है भाई। गायकों की श्रेणी में बड़े सुरीले गायक कलाकार हैं। द आर्टिस्ट ऑफ द वीक इज ए हरिहरन।

0: हरिहन हैं इस सप्ताह के कलाकार भाई। 4 जुलाई को तो उनका शो बहुत सारे लोग देखने जा रहे हैं, उन्हें लाइव सुनेंगे, लेकिन इस सप्ताह के एंड तक यानी वीकेंड के दौरान भी उनकी आवाज गूंजती रहेगी लाइक रेडियो नेटवर्क की लाइक गोल्ड पर, क्योंकि ही इज द आर्टिस्ट ऑफ द वीक ऑन लाइक गोल्ड।
1: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली,
2: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग। डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स। विजिट dairyvalley.net।

और साहब ये गीत हम कर रहे हैं शिवम और निकोल के नाम। भाई ये शादी के बंधन में बंधे हैं और जर्मनी से शिवम बारात लेके आए और कहते हैं कि जर्मनी में हमारा सारा परिवार आपके प्रोग्राम्स को सुनता है। भाई यहाँ जो है लड़की वाले और वहाँ लड़के वाले दोनों ही मेरे कार्यक्रमों से जुड़े होते हैं, इसलिए भाई शादी के बंधन में बंधने वाली इस मंगलमय जोड़ी को परवेश जी और उनके परिवार की ओर से और शिवम आपके जगह परिवार की ओर से भी भाई आपको दोनों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। शादी का ये गीत शिवम और निकोला के नाम।

0: सचदेवा परिवार की ओर से भाई उनकी बेटी की शादी शिवम के साथ जर्मनी में जा रही है, बेटी दुल्हन बनकर की, और पिता जो है विदा कर रहे हैं कन्या को। भाई बहुत सारे आशीर्वाद और शुभकामनाओं के साथ ही शादी का गीत हमने बच्चों के नाम किया, और शादी के बंधन में बंधने वाले बच्चों के नाम, और अब बच्चे नहीं है, बड़े हो गए हैं। माता पिता के लिए तो बच्चे ही रहते हैं भाई, कितने भी बड़े हो जाए। तो भाई जर्मनी वालों, आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप लाइका गोल्ड के कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं, तो जानकर बहुत अच्छा लगा, जुड़े रहेगा। एक बात आपने कही भाई, कौन कह रहे थे कि जब जब आप छुट्टियों पे जाते हैं ना, अच्छा नहीं लगता। अरे साहब, छुट्टियों पे कहाँ जाते हैं, जर्मनी ही तो आते हैं। कई बार छुट्टियां लेकर जर्मनी का ही चक्कर लगता है भाई, तो कभी वहीं आके मुलाकात करेंगे आशा माई मंदिर में आपके साथ। Feel good track.
1: Brought to you by Dairy Valley. Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Leica Radio. Women's Cricket Updates, presented by Carmel Prabhakar, are brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
3: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. RoboThink.co.uk/Leica.
0: और साहब, क्रिकेट अपडेट लेकर के हमारे कमल प्रभाकर लाइन पर हैं। भाई क्या चल रहा है विमन क्रिकेट में? हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू कमल जी।
4: रवि जी गुड आफ्टरनून। अभी तो कुछ नहीं चल रहा।
0: हाँ?
4: अभी तो मैच तो शाम को स्टार्ट होगा।
0: हाँ, हाँ?
4: तो न्यूजीलैंड इज प्लेइंग आयरलैंड टुडे, तो
0: अच्छा,
4: वो भी अच्छा मैच होना चाहिए आज, तो यू नो शुड बी अ गुड मैच दैट स्टार्ट्स लेटर ऑन टुडे 18:30। तो बाकी कल के मैच भी बहुत अच्छे मैच हुए थे। तो अभी लेडीज जो क्रिकेट है, देखो गोइंग टू अ डिफरेंट स्टैंडर्ड, इट्स गेटिंग मोर एक्साइटिंग, नेल बाइट फिनिशिंग, तो यू नो द क्रिकेट इज गेटिंग बेटर डे बाय डे। और अभी इतनी गर्मी हो गई है, जैसे आप इंडिया या पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका उधर खेल रहे हो।
0: जी जी जी,
4: कंडीशंस आर गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर द इंडियन टीम।
0: आज का
4: माहौल अभी बन रहा है।
0: आज का मैच कौन से ग्राउंड में है?
4: हेलो, आज का ग्राउंड है साउथहैम्पटन में।
0: साउथहैम्पटन में बॉल। हाँ
4: जी जी, तो इट विल बी अ गुड डे आई थिंक, जिसने भी जाना है, जूनियर टिकट्स आर स्टिल अवेलेबल, बट इट्स अ ग्रेट मैच टू वॉच।
0: थैंक यू,
4: आगे भी बहुत बहुत अपडेट देंगे आपको।
0: थैंक यू वेरी मच कमल। आई अंडरस्टैंड बिकॉज एट दिस मोमेंट द मैच इज नॉट गोइंग ऑन, लेकिन कल के मैच का नतीजा और आज होने वाले मैच के बारे में जानकारी आपको मिल गई। बहनों भाइयों, विमन ICC विमेंस वर्ल्ड कप क्रिकेट इज गोइंग ऑन, और भाई मैच के साथ जुड़े रखते हैं हम कमल जी के थ्रू, आपको जुड़े रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू कमल जी।
2: This update was brought to you by TW Pays. Visit twpays.com/Leica for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
3: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 20% on full week summer camp bookings with code LEICA20 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
0: और भाई एक दो सूचनाएं आपके लिए। एक तो हम बताना चाहते हैं कि लाइका रेडियो नेटवर्क हैज कंफर्म्ड विद पार्टनरशिप विद द प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड रागासन। बड़े मशहूर हैं साहब, उनकी डिटेल्स हमारे LEICARadio.com पर अवेलेबल हैं। और इसके अलावा भाई याद दिलाना था आपको कि द लेजेंडरी सिंगर हरिहरन रिटर्न्स टू द UK फॉर सोल इंडिया एट रॉयल फेस्टिवल हॉल लंदन 4 जुलाई रविवार को इनका शो हो रहा है और बड़ी धूम मची है। टिकट्स एट southbankcenter.co.uk। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क। ये दो बातें आप तक पहुंचानी थी। तीसरी बात यह कि राइट नाउ व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, व्हेन आई एम प्रेजेंटिंग दिस प्रोग्राम, भाई हमें फिर से याद दिला रहे हैं वीरेंद्र चौधरी के ठीक इस समय उनका एक बड़ा भक्ति भाव पूर्ण जो है संगीत रिलीज हो रहा है, महादेव पोणाहारी भारत में। और भाई महादेव पोणाहारी बाबा बालकनाथ जी के अनुयायियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। कल हमने बधाई दी थी, कल होना था रिलीज लेकिन किसी टेक्निकल वजूहत पर ये कल नहीं हो सका, तो आज इस समय ठीक 12:30 बजे, अब 12:35 हो गए हैं यहाँ के समय के अनुसार रिलीज हो रहा है। तो हम एक बार फिर से आपको और वीरेंद्र चौधरी जी आपके साथ साथ शहजादा जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। आपका ये भावपूर्ण भक्ति संगीत लोगों के घरों तक पहुंचे, दिलों तक उतरे। थैंक यू वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस।
2: ये है लाइका रेडियो।
1: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
1: और साउथहॉल ट्रेवल फिर याद दिला रहे हैं आपको कि भाई छुट्टियां मनाने के लिए इन गर्मियों में जरूर जाइए और साउथहॉल ट्रेवल की ऑफर्स का फायदा उठाइए। उनका नाम, उनका काम, उनका मुकाम आप जानते हैं, बड़े प्रतिष्ठित ट्रेवल हैं साउथहॉल ट्रेवल, ट्रेवल एजेंट हैं भाई। 40 वर्षों का उनका भरोसा लोगों के दिलों में राज करता है। ट्रेवल अवार्ड, ब्रिटिश ट्रेवल अवार्ड भी जीत चुके हैं। तो विजिट साउथहॉल ट्रेवल, कॉल 0208-574-8410।
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favourite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio.

0: Free Disha Rice Tasting on the 20th and the 21st of June from 10 a.m. to 5 p.m. at Falcon Supermarket, 135 Carlton Road, Nottingham, NG32FN.
1: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
2: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented and perfect for the dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
4: फोन 0208574 8410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ। आप पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मड़शे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो। डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज। कॉल करो 0203-773-6333। मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल mantra.
1: Save the date. Friday 3rd to Sunday the 5th of July. An Indian summer is back.
2: Presented by Inspirate. Exclusive radio partner, Leica Radio Midlands.
1: For sponsorship inquiries, call Leica Radio on 0116 471 0697.
2: Or sales at leicamedia.co.uk. Think you might be overpaying for card payments? Most businesses don't realize until they compare. Send your latest statement to TW Pays and get a free comparison quote with the reply within 24 hours. Visit twpays.com/Leica. TW Pays, helping businesses keep more of what they earn.
6: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
7: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
8: Did you know you can advertise on this station, Leica Radio Midlands, plus our other offerings, Leica Radio Greater London, Leica Gold Greater London, and Leica Radio Greater Manchester. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0116 471 0697 or email sales@leicamedia.co.uk.
9: Tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.
10: और लीजिए साहब, एक गीत उनके नाम लगाते हैं जो आज अपना जन्मदिन मनाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बार भारत की अपोजिशन लीडर पार्लियामेंट में जो हैं राहुल गांधी, वो उन दिनों यहाँ लंदन में पढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने फोन किया और कहा कि मैं राहुल गांधी बोल रहा हूँ। अनीसा नासिर प्रोग्राम कर रही थी, कहती है राहुल गांधी, यू मीन दी राहुल गांधी। बहुत साल पहले की बात है शायद सनराइज पर, तो भाई उन्होंने कहा हाँ, तो भाई उन्होंने एक गीत की फरमाइश की और अनीसा जी ने उनके लिए बजाया, फिर सबको बताया उन्होंने कि आज राहुल गांधी ने हमें फोन किया। भाई आज मुझे फोन तो किया नहीं, हाँ देखिए वैसे मुझे बड़े बड़े लीडर्स ने भाई फोन किया है कभी कभी, जैसे मोदी जी ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, मैंक्रो ने, स्ट्रामर ने, इन्होंने तो मुझे फोन नहीं किया, लेकिन बहुत बड़े बड़े लोगों ने फोन किया, बताया है कि आज राहुल गांधी का जन्मदिन है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू यू राहुल। लेकिन भाई उनके साथ साथ आज आंग सान सू की, पॉलिटिशियंस में देखिए उनका भी जन्मदिन है, ये म्यांमार की एक नेत्री हैं, और भाई आजकल तो क्या कहें, बस वहाँ सत्ता परिवर्तन और पॉलिटिशियंस की हालत ऐसी होती है, पर हम उनकी लंबी उम्र की दुआ करते हैं। इसके अलावा आज जन्मदिन मनाने वालों में एक बड़ा विवादास्पद नाम है, सलमान रुश्दी। भाई वही जो जिन्होंने वो सैटानिक वर्सेस लिखी थी, मुंबई में 19 जून को 1947 में पैदा हुई थी, और सोमू मुखर्जी आज पैदा हुए। भाई फिल्मी दुनिया में अगर और कुछ नाम देखूं तो और कौन पैदा हुए थे आज, भाई एक सलोनी छोटी सी बच्ची जो कॉमेडी शो में आती थी उसकी अपने कॉमेडी सर्कस में, तो भाई उनका भी जन्मदिन आज है। और आपके घर परिवार में अगर किसी का जन्मदिन आज है तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हाँ, आशुतोष आशीष विद्यार्थी, ये भी फिल्मी दुनिया से हैं, और मुकेश खन्ना जो महाभारत में आए थे भाई, उनका भी जन्मदिन आज है। तो आपके घर परिवार में भी किसी का है तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, और ये गीत तमाम जन्मदिन मनाने वालों के नाम।
11: एंड एंजॉय कोको नूडल्स इन 3 मिनट्स।
12: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
13: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
10: गीत बाद में सुनवाएंगे भाई, पहले आपको ये रेट्स बता दें, और इस समय जो रेट्स चल रहे हैं लेम्फाई की, एक पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में वो दे रहे हैं 124.86 रुपीस, पाकिस्तानी 368.02 रुपीस, श्रीलंकन रुपए 441 यानी 441.59, और बांग्लादेशी टके 162.42, अफगानी 83.93 एट दिस मोमेंट दे आर गिविंग।
13: Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is LIKA Radio across the Midlands. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
10: और साहब लगे हाथ सुन लीजिए, गोल्ड का रेट सोना लुढ़का कुछ सस्ता हुआ, यकीन करें या ना करें, बट टुडे एट दिस टाइम द गोल्ड इज सोल्ड एट द रेट ऑफ 100.84 पाउंड्स पर ग्राम, 100 पे आ गया।
13: राम ज्वेलर्स स्पेशलाइजिंग इन डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, 22 कैरेट गोल्ड, व्हाइट गोल्ड ज्वेलरी, कॉइंस एंड गोल्ड बुलियन बार्स। विजिट राम ज्वेलर्स ऑन 116 बेलग्रेव रोड, लेस्टर, और कॉल 0116 266 4278।
10: अब देखते हैं भाई अभिनय सम्राट दिलीप कुमार के ठुमके। यूसुफ भाई शुरू हो जाओ वहीं पे जहां भी हो।

0: दिल तो टूट पे किया,
1: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी।
2: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती।
1: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394।

0: देखिए एक नई मोहब्बत की दास्तां तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit HartyHanks.com today. Harty Hanks. Build your future before someone else does. Visit HartyHanks.com today.
2: Leica Radio Network. Broadcasting across the UK with Asian stations.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: और बहनों भाइयों, अब रवि शर्मा के लिए आपसे इजाजत लेने का समय आ गया है। भाई बता दूं कि कुछ दिनों के लिए अब मैं फिर छुट्टी पर जा रहा हूं, लेकिन मैं दूर जाके तुमको दिल से भुला सकूंगा, ये वहम अपने दिल से बिल्कुल निकाल रखना। मैं खुद भी एहतियात ही बरतूंगा, मगर तुम जब तक मैं आ ना जाऊं अपना ख्याल रखना, याद करना और याद आना। 2 वीक के लिए छुट्टी पर रहूंगा, तब तक के लिए अपने दोस्त रवि शर्मा को इजाजत दीजिए। जुलाई में 6 तारीख को वापस एयर पे स्टूडियो में हाजिर रहूंगा, तब तक के लिए सितारों को नजरों में महफूज रखना। बहुत दूर तक रात ही रात होगी, और तुम भी मुसाफिर हैं, हम भी मुसाफिर, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।

0: सम सुहाना कैसा यारो यारो नीलाम करो सुस्ती हमसे उधार ले लो मस्ती हर हस्ती का नाम तंदरुस्ती यारो नीलाम करो सुस्ती
1: एस डी बर्मन का संगीत और भूपिंदर सिंह ने गाया किसके साथ किशोर कुमार के साथ यस फिल्म प्रेम पुजारी
2: फील गुड ट्रैक Brought to you by Derry Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Making summer feel better on the Leica Radio Network.

A wonderful listener we have is Inta Shab Ji. Has a wonderful choice of songs. ये गाना उनकी नजर में करता हूँ. कितना प्यारा गाना है फिल्म गीत का. अविनाश वधावन मेरा दोस्त was in that particular film there, yeah. 1992 की. And क्या गाया लता जी ने.

आज तो मैं नाचूंगी। यस, ये गाया रूना लैला ने, लेकिन नाच कौन रहा है? ऑफ कोर्स इट्स अंजलि, ऑल द वे इन पोर्चुगल इन पाफोस एंड पूरी पलटन, मतलब के मेरे दोस्त जयदेव सोनी को लेकर वो लोग सब हॉलिडे मना रहे हैं। एंड दिस इज द थ्री किड्स, आशीष, सरजू एंड नीरा डी इन लॉ दीप्ति एंड ग्रैंड किड्स राधा एंड कृष्णा प्लस लताबेन, ऑल ऑफ यू। एंड हे बडी, यू आर एंजॉइंग योरसेल्फ एट पाफोस, सो हियर्स अ सॉन्ग फॉर यू। This is for a wonderful singer and friend, Jaydev Soni, going all the way to Paphos. Okay.

0: Listen to the freshest hits added daily on Lyca Radio. Miss your favourite show on Lyca Radio Midlands? You can now listen back at lycaradio.com. It could be breakfast with Kajal, drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to lycaradio.com and the Lyca Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Lyca Radio Midlands when you want. Lyca Radio Midlands is a part of the number one Asian commercial network. The Lyca Group. Home of Lyca Radio and Lyca Gold.
1: Lyca Radio.
2: ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
3: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
4: खुद से भी ज्यादा।
2: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
4: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
2: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुमसे तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT394.
0: This is the Lyca Radio Network, broadcasting across the UK. Did you know you can advertise on this station, Lyca Radio Midlands, plus our other offerings, Lyca Radio Greater London, Lyca Gold Greater London, and Lyca Radio Greater Manchester. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0116 471 0697 or email sales at lycamedia.co.uk. A Lyca Radio classic. Plays now.

0: नंबर 9।
1: मेरी आंखें सोती हैं मगर ये दिल जागता है। ऐ मेरी प्यारी चलिया।

0: your evening with Radio Wally's Fri-Yay Firecracker.
1: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented, and perfect for the dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa, or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.
2: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, exciting होता है क्योंकि वो नया होता है.
3: From friends to lovers to total chaos, the perfect cocktail is back.
4: दोस्ती की कोई value नहीं है ना तुझे?
5: इतने अच्छे दोस्त भी नहीं हैं.
3: Shahid Kapoor, Kriti Senon and Rashmika Mandanna come together in this summer's hottest romantic comedy. Cocktail 2, now in cinemas.
6: दुल्हन के लिए मेकअप.
3: For cinema listings and local info, visit Bakrania Media on Instagram.
7: Save the date. Friday 3rd to Sunday the 5th of July. An Indian summer is back.
1: Presented by Inspirate. Exclusive radio partner, Leica Radio Midlands.
7: For sponsorship inquiries, call Leica Radio on 0116 471 0697.
1: Or sales at leicamedia.co.uk.
0: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
8: जी टीवी HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां. मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से.
9: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
10: खुद से भी ज्यादा.
8: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में.
10: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है.
8: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुमसे तुम तक हर रात 8 बजे जी टीवी HD पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394.
11: When it comes to heart attacks, you might be surprised to hear the symptoms don't always feel severe. You could experience a squeezing across the chest, a feeling of unease, a sense something's not quite right. Don't be tempted to dismiss the signs and wait to see what happens. The faster you seek medical help, the better your chances. It's never too early to call 999 and describe your symptoms. Your NHS is here for you.
12: You probably think you're pretty good at multitasking behind the wheel. I mean, you have to multitask to drive. So what's wrong with checking your phone? The thing is, your brain simply doesn't work that way. Even a quick reply. It's time for quick reply. Affects your concentration and makes you less able to react to hazards. If you use a mobile phone while driving, you're 4 times more likely to crash. Think. Put your phone away.
1: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी.
13: हमारे पति हमको छोड़ दिए.
1: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया.
13: दिल तो टूट पे गया,
1: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी.
14: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती.
1: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी. गंगा माई की बेटियाँ हर शाम 7 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394.
0: A true Radio Wally Cracker Classic. Name the 90s number. This is Leica.

0: ओए होए, इतना घूम घामने के बाद भी सजना नहीं मिला, क्योंकि तो कहते हैं ना, बच्चा जब घर में होता है और गांव में ढुंढोरा पीते हैं, घर में उसको प्यार मिल गया, हाँ खाम खा बेचारी इधर उधर हो रही थी. Forest lots of love going out to you.
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: Feel good track of the hour.